खती खतारी कलम लाए धान बकुरो पोदई बकुर तिखती खतारी कलम लाए यो धान रे पुरो टपक कई मोर ला तंदरी का।